0: पीछे एक लैंड रोवर रिक्वेस्टिंग फॉर रेडियो चेक ओवर.
1: ये एक लैंड रोवर लाइन क्लियर.
2: बाय सीएसआई एलनब्रुक रेडियो चेक प्लीज.
1: एलनब्रुक लैंड क्लियर.